0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
8: Bollywood classics ka saath, sirf Leica Gold par.

0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे।
1: सोता है, बहुत जागा है ना।
0: ऊपर वाला दुखियों की

0: भोले वाले ललुआ
1: बोले बोले बोले बोले बोले बोले
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
2: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है ना जुल्फों में तेल।
3: अरे अपने

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे

विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

जे को मन जाने मन कोय, मने सुत होवे मन बुद्ध, मने सगल पवन की शुद्ध, मने मोह चोटा ना खाए, मने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोय, मने मार्ग ठाक ना पाए, मने पत्स्यों प्रगट जाए, मने मग ना चले पंथ, मने धर्म सेती संबंध।

दुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भाव है साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जात जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर

अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेख है सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए धर्म खा

0: ये है लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
2: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
3: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
3: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear, open 7 days a week.
2: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
3: Visit KajalsCouture.co.uk.
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
3: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
3: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: कैशबैक रीमॉर्गेजेस द ब्रोकर दैट गिव्स यू बैक।
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट मंत्रा हॉलीडेज डॉट को डॉट यूके और कॉल 0203-773-6333 नाउ। Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
8: ફાધર સન નો બોન્ડ જેટલો સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે.
9: અંકલ તમે પહેલાથી આવા જ છો.
10: આવા એટલે કેવા?
8: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર.
10: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તો બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજથી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવીને પૂછે.
8: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધ ઇમોશન્સ લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાઝ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
10: તો થઈ જાય. Once more.
11: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
12: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo only on Leica Gold.

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: फादर सन नो बॉन्ड जितलो स्पेशल छे इटली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे
3: अंकल तमे पहला थी आवाज छो
4: आवाज એટલે કેવા
2: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર
4: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તો બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું અરે જિંદગી એવી મોજ થી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવી ન પૂછે
2: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધ ઇમોશન્સ લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાસ ઓન 19 જૂન ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ
4: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 Line.
6: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
7: It's India versus Pakistan, and this is India's lineup.
8: This June, the FIH Hockey Pro League brings one of sport's greatest rivalries to London.
9: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
8: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
9: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
7: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
9: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
11: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
12: In September, Paris ma itihas lakhai rahyo che.
13: BAPS Mandir no opening and Star Tours tamne lai jai rahyo che ap pavitra yatra par.
12: Europe na 3-9 divas na tours.
13: France, Switzerland, इटली और जर्मनी साथे
12: दर्शन पण और यूरोप पण
13: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ही बुक करो स्टार टूर साथे
12: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स
13: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
14: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल

0: जाना के हाँ हाँ हा, और सुनो हाँ
1: एक एक परी थी।
0: क्या?
1: एक परी थी, तोता परी।
0: हंसी वो बड़ी थी,
1: हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका।
0: क्या?
1: गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो, हाँ गग

अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है? कोई है? कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: यू नो आई शुड डू अ कंपटीशन वेयर आई गेट यू टू सिंग सागर के नारे, लेकिन कंपटीशन आज है हरिहरन के बारे में. और एक गाना आपकी आवाज से मैं सुनना चाहती हूँ, वो भी एक हरिहरन गीत, सो दैट यू कुड विन दीज टिकट्स टू गो एंड सी हिम ऑन 4th of July. सो लेट्स गेट दीज मैसेजेस कमिंग थ्रू. सम ऑफ यू आर सेंडिंग मी जस्ट अ सिंपल मैसेज, इट हैज टू बी अ वॉइस नोट, सो कम ऑन लेट्स डू दिस प्रॉपरली.
1: ये है Laika Gold. Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: I mean, with this beautiful weather, yeah, I still want to go on holiday because I just want to get away from here. I want to explore the beach breaks. I want to go to city escapes. And of course, I'm sure you want that too, with holiday deals that include flights, holidays and atoll protection. Well, trusted over for 40 years and winners of the British Travel Award, it is of course South All Travel. Call them today on 0208 574 8410.
1: Breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Laika Gold.
0: Can I just remind you, we've got quite a lot happening here over the summer, but one thing for sure, which of course you cannot miss, is the much-awaited FIH Hockey Pro League matches between India and Pakistan taking place in London this week on 23rd of June and 26th of June. And they take place at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre. So make sure you get your tickets from englandhockey.co.uk. That's englandhockey.co.uk. And of course, supported by us here at Laika Radio Network.
1: Laika Extra Podcast Update.
0: Oh, another one I'm so excited about. It's of course South Asian Women in Sports, hosted by Deep Raja. It's our 21st podcast episode. We talk about breaking barriers in a male-dominated field and why representation matters. And of course, you can watch this on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms. It of course is Laika Extra Podcast.
1: Laika Extra is here.
2: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
3: काजल्स मॉर्निंग मंत्रा प्रेजेंटेड बाय मंत्रा हॉलीडेज, योर फ्रेंडली हॉलीडे पार्टनर फॉर यूके, यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस. फॉर योर मेमोरेबल हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड बजट, कॉल 0203-773-633 टू बुक योर ड्रीम हॉलीडे.
4: काजल का मॉर्निंग मंत्रा

0: लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344. 24-hour line.

0: लीजिए, मैं भी आ गई हूँ आप सबका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक। सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो लाइका रेडियो, जहाँ पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहाँ भी हमारे साथ ही हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज रवि शर्मा जी यहाँ नहीं है, रवि शर्मा जी हॉलीडेज पर गए हैं 2 वीक के लिए, वो यहाँ नहीं आएंगे, तो उनकी जगह इस शो में मैं आपका साथ दूंगी। और आपको बता दें कि जो ये गीत था फिल्म लव स्टोरी से लिया था, जिसमें आर डी बर्मन का म्यूजिक था, और उससे पहले फर्स्ट फिल्म का गीत जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक आपने सुना। और इस तरह के गाने प्रोग्राम में मैं आपको सुनवाती रहूंगी, आप बस हमारा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। दनाज 1 pound आपको देगा 124.05 भारतीय रुपए, लेकिन अगर आप जून से पहले पहले 1000 pounds या उससे ज्यादा ट्रांसफर करवाते हैं मनी, तो 75 pounds का वाउचर आपको मिल सकता है। और अगर आप 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक जीतना चाहते हैं तो आपको 2000 pounds से ज्यादा का मनी ट्रांसफर करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आज जो मैचेस हैं उनमें पहला मैच है न्यूजीलैंड और इजिप्ट के बीच में, आज दूसरा मैच होगा फ्रांस और इराक के बीच में, और आज एक और मैच है जो होगा अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच में। लेकिन आपको बता दें कि आप अगर 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट करना होगा हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से, और ये सब हो सकता है जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Yeah, like a

0: लीजिए, लता जी की आवाज में था ये गाना, ठंडी ठंडी हवा में दिल लल जाए। लेकिन फिलहाल तो हम सब ठंडी हवा के लिए तरस रहे हैं। आजकल यहाँ की हवा उतनी ठंडी नहीं है जितनी हुआ करती थी, लेकिन मौसम आज बहुत ही अच्छा है। बट आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा गर्म होने वाला है, तो बस यही कहूंगी कि अपना ध्यान रखिए। और हमारे ढेरों साथी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच आपके स्वागत के लिए, आपके साथ देने के लिए। असल में ये कहना चाहिए, एजाज जी चशम से, जासू जी, अर्जन जी, थैंक यू पॉश गर्ल से हमारे साथ जुड़े हैं, कौन जिनका नाम मैं नहीं देख पा रही हूँ, आप अपना नाम जरूर बताइए क्या है, नंबर एंडिंग 343। हमारे साथ गिरीश जी हैं, भारत में सुन रहे हैं, मिसेस शेख हैं, थैंक यू। ये है लिस्बन पॉश गर्ल से नसीर अहमद भट्टी जी, जी हाँ आपका नाम तो मुझे मिल गया है। रानी जी हैं स्लाव से, थैंक यू। शेखर अनान जी, तोची जी, भारत जी हमारे साथ हैं, हितस सोलंकी, बहुत सारे साथी जो रेगुलरली हमारा साथ देते हैं, सत्यनारायण सैनी जी, नरेंद्र पांचाल, जासू जी बहुत बहुत, महेंद्र बजारिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है इस शो में। और बस आगे बढ़ जाते हैं और
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आगे बढ़ जाते हैं और शुरू करते हैं आज के प्रमुख समाचारों का सिलसिला।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: आज के प्रमुख समाचारों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में बताएं कि बेल्जियम और ईरान के बीच मैच जो था वो ड्रॉ हो चुका है। तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। कतर के गैस प्लांट में एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 54 यानी कि 54 लोग घायल हुए हैं और 18 लोग लापता हैं। मध्य पूर्व के देशों की यात्रा पर जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका की बातचीत पर पाकिस्तान और कतर ने साझा बयान किया जारी किया। चलिए विस्तार से खबरें सुनाते हैं। सबसे पहले खबर आ रही है अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो वहां दर्शन करने जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है एक वीडियो और उसमें कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का तो कैश चोरी हो गया है और कई हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हुए हैं और अब तक एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक SIT गठित की है और उन्होंने कहा है कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उधर अमेरिका से चल रही बातचीत के दौरान एक ईरानी सांसद ने कहा है कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अंतिम फैसला ईरान करेगा। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरानी संप्रभुता का प्रतीक है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि तुम यानी कि अमेरिका धमकी दो, हम कार्रवाई करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट ना तो तुम्हारा पर्सनल कैसीनो है और ना ही आधुनिक समुद्री डाकुओं का अड्डा। उन्होंने कहा कि यह ईरानी संप्रभुता का प्रतीक है और इस बारे में अंतिम फैसला ईरान की जनता और उसकी बहादुर सेना के हाथ में है। फीफा वर्ल्ड कप में 2026 में बेल्जियम और ईरान के बीच खेला गया ग्रुप जी का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। लॉस एंजलिस स्टेडियम में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन शानदार मजबूत गोलकीपिंग और डिफेंस के कारण दोनों ही टीमें गोल नहीं कर पाईं। और इस ड्रॉ के साथ ही बेल्जियम और ईरान को अब भी इस विश्व कप में अपनी पहली जीत का इंतजार है, क्योंकि दोनों ही टीमें अभी तक कोई भी मैच नहीं जीत पाई हैं। उधर तमिलनाडु से खबर आ रही है कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर के पास एक निजी कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। तमिलनाडु विधानसभा में ये जानकारी देते हुए श्रम मंत्री परवेज ने कहा कि सभी मृतक महिला कर्मचारी थीं। मंत्री ने बताया कि अमोनिया गैस रिसाव से 74 यानी कि 74 लोग प्रभावित हुए हैं और इनमें से 42 को सरकारी और निजी अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती किया गया है। बॉलीवुड से खबर आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर रविवार शाम को उनके घर के बाहर धारदार हथियार से हमला हुआ और पुलिस के मुताबिक ये हमला जमीन विवाद के कारण हुआ। हमले में घायल विजेंद्र नाथ तिवारी को पहले गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें पटना एम्स रेफर किया और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और अब खबर सुनाते हैं कतर से। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित एक गैस प्लांट में बड़ा धमाका हो गया है। इस हादसे में 54 लोग घायल हुए हैं और 18 लोग लापता हैं। कतर प्रशासन के अनुसार रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में एक धमाका हुआ और फिर बड़े पैमाने पर आग लग गई। कंपनी ने कहा है कि इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर भेजी गईं और थोड़े समय बाद आग पर काबू भी पा लिया गया है। गृह मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि धमाके में 54 लोग घायल हुए हैं जबकि 18 लोग लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है। और मंत्रालय के अनुसार धमाका एक तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, इससे गैस का कोई ऐसा रिसाव नहीं हुआ है जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बने। और अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। भारत को वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में 2026 में पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रविवार को हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम के खिलाफ 6 विकेट से अपनी जीत दर्ज की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 7 विकेट्स गंवाकर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों में 31 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 12 गेंदों में 17 रन बनाए और भारत ने पावर प्ले के दौरान सिर्फ 59 रन बनाए। और जवाबी पारी में साउथ अफ्रीका ने 19.1 ओवर्स में 4 विकेट गंवाकर जो स्कोर था उसे चेस कर लिया और जीत हासिल कर ली। और आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तान ने बताया है कि स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका की बातचीत में क्या तय हुआ। स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है। कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। इस बैठक में लेक ल्यूसर्न समिति जिसे कहा जा रहा है उसे लेकर कतर और पाकिस्तान ने एक साझा बयान जारी किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि उच्च स्तरीय वार्ता का पहला सत्र खत्म हो गया है और इस बयान में बताया गया है कि समझौते के आधार पर सबने मिलकर तय किया है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी पूरी बातचीत पर नजर रखेगी और देखेगी कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। वार्ताकार इस कमेटी को लगातार रिपोर्ट देंगे, साथ ही अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी जो खास मुद्दों पर काम करेंगी, जैसे कि परमाणु कार्यक्रम, ईरान पर लगे प्रतिबंध, निगरानी, विवाद और उसको सुलझाने के तरीके। यही थे आज के प्रमुख समाचार। अब समाचार समाप्त हुए।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: ये थी फिल्म राजकुमार जो 1964 में आई थी और मैं देख रही थी कि राजकुमार नाम से कितनी सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में बनी हैं आई थिंक उनमें से सबसे ज़्यादा सुपरहिट यही फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर थे और साथ में थी साधना। अपने ज़माने के दोनों ही सुपरस्टार्स रहे हैं और इस फिल्म के गाने भी क्या कमाल है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। अभी कुछ गाने मैंने इस फिल्म के आपको सैटरडे को भी सुनवाए थे जब शम्मी कपूर साहब को यादें में याद किया था, लेकिन आज इस गाने को प्रोग्राम में जगह मिली एंड आई एम श्योर उस दिन जो हमारे साथी इस गीत को सुनना चाह रहे थे उन्होंने आज इस गीत को जरूर एंजॉय किया होगा।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाते हैं और अब लेकर जाते हैं 90s के दौर में, लेकिन उससे पहले आप सभी के मैसेजेस पर एक नज़र डाल लें। वजाहत कहते हैं मैंने आपको सुनना शुरू किया है एलेक्सा पर। क्या बात है, एलेक्सा बहुत ही आज्ञाकारी है, हाल बात मान लेती है। ज़रा कहो एलेक्सा प्ले लाइक अ गोल्ड या लाइक अ रेडियो, फौरन शुरू हो जाता है। तो आई एम श्योर वजाहत आप इंजॉय कर रहे हैं शो को, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू महेंद्र जी, आपको ये गाना बड़ा ही अच्छा लगा। प्रज्ञा कहती है ऋतु मैं भी आपके साथ आ गई हूँ, स्वागत है आपका। विनोद जी हमारा साथ दे रहे हैं, हंसा जी थैंक यू। नरेंद्र पांचाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे दो दो पंखे भेजे, क्या बात है, बहुत अच्छी हवा आ रही है। लेकिन वैसे थैंक गॉड स्टूडियो में बहुत ही बढ़िया एसी है तो गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन थैंक यू आपके इस प्यार के लिए। हैरो से हमारे साथ जुड़ी हैं दिव्या जी, चंदू शाह नमस्कार आपको। अरुणा जी कहती हैं 1 बजे तक मैं आपके साथ ही रहूंगी, थैंक यू मिथुन पटेल। चश्म से एजाज जी हमारे साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे गिरीश जी कहते हैं कि संडे को मैं आपको सुन नहीं पाया था लेकिन उसकी कमी आज पूरी हो गई, तो पूरा हफ्ता आनंद में बीतेगा। बिल्कुल कोशिश ऐसी ही रहेगी कि हफ्ता आनंद में बीते, आपका भी और मेरा भी, अच्छे अच्छे गाने सुनाऊं। और हाँ, जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि मैं रवि शर्मा नहीं हूँ, मैं ऋतु शर्मा हूँ। रवि जी हॉलीडेज पर गए हैं, जी हाँ 2 वीक के लिए छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, 2 वीक बाद वो यहाँ आएंगे, तब तक उनकी जगह इस शो में मैं ऋतु शर्मा आपके साथ रहूंगी।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: और अगर आप भी हॉलीडेज पर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, विजिट कीजिए साउथ ऑल ट्रैवल या फिर उन्हें फ़ोन कीजिए 0208-574-8410 पर। और ये आपके ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंट है, 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीता है, और आप इनके साथ हॉलीडे डील्स बुक कर सकते हैं, दैट इंक्लूड फ्लाइट्स होटल्स और ये सब है एटॉल प्रोटेक्टेड। तो बस बिना किसी देरी के उन्हें फौरन फोन घुमाइए 0208-574-8410 पर।
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है
4: लाइका गोल्ड
5: ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद unbeatable price
5: at all protected.
6: Visit travelhubworld.com.
7: Welcome to the jungle.
8: Film bilkul fake.
7: Hamari film army wali.
9: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
8: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स 0।
7: और स्टार कास्ट है
8: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
10: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
8: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
11: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
12: मैं किस लिए फिल्म में?
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
14: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 02.
4: 4039635757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
4: In Dubai.
15: London, mark the date. 25th of June.
16: Something truly exciting is on the way.
17: The authentic taste of India is finally coming to Leicester Square in central London.
15: Yes, Haldiram is opening 25th of June in London.
17: From Raj Kachori to Chole Bhature to Pav Bhajis.
16: Parathas, sweets and so much more. All the flavours you've missed from India are coming right here to London.
15: Haldiram's opening 25th of June
17: at Leicester Square, central London.
18: Haldiram's. The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
19: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
18: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
19: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
20: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
21: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
22: Eviction? Tenant dispute, property ka masla. Canton Solicitors London landlords or tenants ke liye fast action lete hain aur residential or commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call kare 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
23: Hey there, main hu Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, ansuni baate, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: This is the Lycra Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टका.
2: Lycra Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LYCA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So Gold Rate is 102.4 pounds per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: Like a goat.
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
10: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
9: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
10: Plus, Lycra listeners get 10% off on bridal wear and party wear, open 7 days a week.
9: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
10: Visit Kajal's Couture. .co.uk. Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
12: ड्रीमिंग ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
13: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
10: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
13: Exclusive radio partner Lycra Radio.
14: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
15: इस जून FIH Hockey Pro League लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. India versus Pakistan live at Lee Valley Hockey and Tennis Center. High speed action, high intensity moments, बिल्कुल unmissable. अपने टिकट्स अभी बुक करें at englandhockey.co.uk.
14: To open the scoring, he does.
15: India वर्सेस पाकिस्तान लंदन 23rd और 26th जून बी देयर
14: सो इंडिया लुकिंग टू प्रेस होम दैट एडवांटेज देयर्स अ चांस
4: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग
16: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस अ वंस इन अ लाइफटाइम स्पिरिचुअल जर्नी
4: ट्रैवल विद योर फैमिली एंड विटनेस दिस डिवाइन ओकेजन अलोंग विद द आईफिल टावर सेंट रिवर क्रूज एंड अ पेरिस सिटी टूर
16: डिपार्चर 5th ऑफ सितंबर कॉल नाउ ऑन 02037736333
4: मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
18: 7 स्टेशंस One podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m.

आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन। और 11:03 हुए हैं, समय है चिंतन का। चिंतन यानी कि आज का विचार। और जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको याद दिला दें कि आज रवि शर्मा जी शो में नहीं है। रवि शर्मा जी 2 के लिए हॉलीडेज पर गए हैं, इसलिए आने वाले 2 मैं ऋतु शर्मा आपका रवि जी के मनोरंजन शो में साथ दूंगी। और अब शुरू करते हैं चिंतन का सिलसिला। कल देखिए फादर्स डे था। मुझे उम्मीद है कि कल आप सभी ने अपने फादर को स्पेशल फील कराया होगा, या फिर आपके बच्चों ने आपको स्पेशल फील कराया होगा। और देखिए आज का चिंतन भी माता पिता को ही समर्पित है। हम जानते हैं कि हमारे माता पिता और ईश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। वो ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं, वो ही होते हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत। किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि जब जब राह में अंधेरा छाया, माँ की ममता ने मुझे राह दिखाया। पिता की उंगली थाम कर जो चला, मैंने हर मुश्किल को चुटकियों में हराया। सुनाती हूँ एक कहानी एक नौजवान लड़के की जिसका नाम था राहुल। एक छोटे से शहर में रहता था राहुल, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने का सपना वो अपने मन में संजोए हुए था। और इसी को पूरा करने के चलते उसने एक

नेशनल स्तर की जो कंपटीशन थी उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया और उसको उम्मीद थी कि वो इस प्रोजेक्ट में अगर सफल होता है तो फिर उसे आगे विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए उसने दिन रात एक कर दिए, अपना सारा ध्यान झोंक दिया, बहुत मेहनत की। लेकिन दुर्भाग्य से अंतिम दौर में उसका प्रोजेक्ट असफल हो गया और इस असफलता से राहुल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि सारी मेहनत बेकार चली गई, अब वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। बस उसने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और बाहर निकलना बंद कर दिया, किसी से बात करना बंद कर दिया और ये दुख अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। कुछ दिनों तक तो ऐसा चला, लेकिन जब उसके पिता को लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ, उसके पिता राहुल के कमरे में आए और राहुल के सिर पर हाथ रखा और बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा, एक असफलता तुम्हारी पूरी काबिलियत तय नहीं करती है। उठो, देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। राहुल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रोते हुए अपने फादर से कहा, पिताजी मैं हार गया, अब मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा बड़ा गुरु भी नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे बताए कि अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मैं जितना अपने आप से कर सकता था मैं उतना कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाया। मेरे पास बड़ी सुविधाएं भी नहीं है, अब मैं करूं तो क्या करूं, बस मेरा जीवन खत्म हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बर्बाद हो गया हूं। इस तरह की बातें वो अपने पिता से करने लगा। उसकी बातें सुनकर पिता अंदर से तो बहुत दुखी थे, लेकिन बाहर से उन्होंने अपना दुख जाहिर नहीं होने दिया और मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हें किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं है राहुल, जब तुम चलना भी नहीं जानते थे तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें संभलना सिखाया, और जब तुम गिरते थे ना तो मैंने तुम्हारे उंगली पकड़कर तुम्हें दोबारा खड़ा होना सिखाया, और जब तक हम तुम्हारे साथ हैं ना तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो, हमारी दुआएं हमारा विश्वास हमेशा बेटा तुम्हारे साथ है। माँ ने भी आगे आकर बेटे के आंखों आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी हर कोशिश में हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और माँ बाप की ऐसी बातें सुनकर राहुल को बहुत हिम्मत आई। उसे समझ आया कि जिस प्रेरणा के लिए, जिस शक्ति के लिए वो पूरी दुनिया में भटक रहा था, वो असल ताकत तो उसके सामने खड़ी थी और वो थे उसके माता पिता, जिनको अपने बेटे की क्षमता पर पूरा विश्वास था। वो ही उसके मार्गदर्शक थे, उनके दोस्त थे और उस समय तो उनके ईश्वर भी थे। उनके यानी कि अपने माता पिता के इस अटूट विश्वास के साथ राहुल ने दोबारा काम करना शुरू किया और अगले ही साल दुगनी मेहनत के साथ अपने आप को तैयार किया और जिस कंपटीशन में वो पिछले साल सफल नहीं हो पाया था, इस बार उस कंपटीशन में उसने पहला स्थान हासिल किया। और जब सफलता के मंच पर खड़ा हुआ और जब राहुल को ट्रॉफी मिली तो उसने सबसे पहले वो ट्रॉफी अपने पेरेंट्स के हाथ में सौंपी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि दुनिया में अगर मेरा कोई है तो मेरे माँ बाप हैं, माता भी, पिता भी, भगवान भी, दोस्त भी, बंधु भी। अक्सर कभी कभी हम हो जाते हैं परेशान और उस समय हमें अपने माँ बाप की बातें भी समझ में नहीं आती हैं। हमें लगता है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनको क्या आता है, इनको क्या पता हमें कितनी परेशानी, हमको कितना दुख है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए, जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको बचपन से पाला है, आपकी हर बात को बिना कहे जाना है, आपकी माँ ने आपके दुख को बिना कहे समझा है, वो माँ बाप बेशक आपसे ज़्यादा जानते हैं और आपके लिए क्या सही है, उनसे भला कोई और
क्या जानेगा, उनसे अच्छी सलाह आपको कहीं और से नहीं मिलेगी।

0: छोटी सी कहानी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज था कि कभी कभार हो जाता है, हमें ये लगता है कि हम अपने माता पिता से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन जीवन का जो अनुभव आपके पेरेंट्स आपके साथ साझा करते हैं वो शायद आपके पास नहीं होता, और वो बस यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें, और उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ बदले में आपसे चाहिए थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार। तो बस पेरेंट्स अनमोल होते हैं, हमेशा किसी के भी पेरेंट्स उनके साथ हमेशा के लिए नहीं रहते, एक ना एक दिन छोड़ के जाने पड़ता है, और तब आप शायद पछताएं कि हाय हमने ये क्या कर डाला। तो इस पछतावे से बचने के लिए अगर आप अपने माता पिता का ख्याल रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बस यही था आज के चिंतन का एक छोटा सा मैसेज। चिंतन हमेशा आप सुनते हैं मंडे टू फ्राइडे रवि शर्मा जी के साथ, लेकिन आज इस शो में ऋतु शर्मा है आपके साथ, और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं। ललित छत्रीसा जी कहते हैं चिंतन तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ हमें गाना भी पसंद आया। तो आपको बता दूं कि ये जो गाना था मैंने फिल्म हम साथ साथ से लिया था, एक पारिवारिक फिल्म थी, सूरज बड़जात्या ने जिसे बनाया था, अच्छी फिल्म थी, अच्छी कहानी थी, और उसी से लिया था ये अच्छा सा गाना। थैंक यू सलमा जी, थैंक यू गिरीश जी चिंतन को पसंद करने के लिए। किरण जी हरो से, फतेह पटेल जी, भारती जी, जगदीश जी बुशी से, जासू जी, हरविंदर जी, महेंद्र बजारिया, राजीव पटेल जी, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। उल्लास जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रकाश सुथार नॉर्थ होल्ड में हमारे साथ हैं, ज्योति गिरीश शाह बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ढेरों मैसेजेस आए हैं। आप सभी चिंतन पसंद कर रहे हैं, इसीलिए चिंतन इतने सालों से चला आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं दो बैक टू बैक गाने।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app, then आज £1 आपको देगा 124.55 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch, जैसा कि मैंने आपको बताया। और एंड ऑफ जून यानी कि जून के ख़त्म होने से पहले पहले आप अगर 1000 pounds से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 75 pounds का वाउचर मिलेगा एवरी डे, एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आपको बता दें कि अगर आपको कोई लीगल रिक्वायरमेंट है या कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस आपको मिल सकती है हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से, और जब आप मेंशन करेंगे लाइका। और आपको बता दें कि आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स खेलेंगी, ये मैच शुरू होगा शाम को 6 बजे से, और फ्रांस और इराक की टीम्स खेलेंगी, ये मैच शुरू होगा रात को 10 बजे से।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: ये है Leica Gold.

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है रवि शर्मा जी का मनोरंजन कार्यक्रम, जिसमें आज ऋतु शर्मा है आपके साथ। और आपने सुना आई नो फिल्म का गाना, जिसमें जैकी श्रॉफ थे, अमृता सिंह थी और साथ में थे जूही चावला। एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुभाष घई, जिन्होंने जैकी श्रॉफ को लॉन्च किया था, उनकी फेवरेट पसंदीदा अगर कोई इंसान था तो वो थे जैकी श्रॉफ। तभी तो देखिए, हीरो तो उनकी फिल्मों के आते जाते रहे, लेकिन उनकी ज़्यादातर सारी की सारी फिल्मों में जैकी श्रॉफ हर फिल्म में नज़र आए। यहाँ तक कि जब उन्होंने देवदास बनाई, उसमें भी उन्होंने जैकी श्रॉफ को एक रोल दिया था। तो जब सुभाष घई साहब से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स मुझे पसंद हैं, लेकिन जैकी श्रॉफ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और बहुत ही सिंपल इंसान रहे हैं, गरीबी से उठकर उन्होंने कहाँ क्या मुकाम हासिल किया है, काबिले तारीफ है। लेकिन आपको बता दूं कि जब आप ये गाना सुन रहे थे ना, तो मैं रॉयल चाय पी रही थी। मतलब आजकल इतना मज़ा है स्टूडियो में, हमारे यहाँ रॉयल चाय की मशीन लग गई है। उसमें आप इलायची वाली चाय ले लीजिए, कड़क चाय ले लीजिए, मसाला चाय ले लीजिए, या फिर सिंपल चाय ले लीजिए। मतलब अब आपको चाय के लिए मेहनत नहीं करनी है। और अगर आपको भी चाय बनाना बोझ लगता है और आप को लगता है कि यार क्या, पहले चाय बनाओ, मसाला कूटो, ये डालो वो डालो, घंटा भर में चाय बनेगी, तो आप भी रॉयल चाय की मशीन लगवा लीजिए। जीवन बहुत आसान हो जाएगा और अब घर से भी अच्छी चाय हमें यहाँ स्टूडियो में मिल जाती है, तो मतलब मज़ा दोगुना हो जाता है। सो थैंक्स टू रॉयल चाय। मैं बिल्कुल दिल से आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी स्टूडियो में आती हूँ तो मुझे एक मज़ेदार चाय का कप मिल जाता है, जिससे अंदर तक आत्मा प्रसन्न हो जाती है। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाने वाली हूँ।
0: ये है लाइका गोल्ड, Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: और ये गाना मैं डेडिकेट करूंगी रॉयल चाय को, क्योंकि उनके साथ यू नो शो करने का मजा ही अलग होता है। तो वंस अगेन थैंक्स टू रॉयल चाय, और यही कहूंगी कि अगर आप भी चाय बनाने के झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो रॉयल चाय की मशीन अपने घर में लगवा लीजिए। एनीवेज, आपको गीत पसंद आ रहे हैं, थैंक यू मानसी जी, ये गीत आपने पसंद किया है, थैंक यू एजाज जी चश्मे में हमारा साथ दे रहे हैं, ज्योति गिरीश शाह बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, एंड कंवल जी आपका मैसेज मिला है और आपने बिल्कुल सही लिखा है कि देवदास संजय लीला भंसाली ने बनाई थी, सुभाष घई ने नहीं। वो तो मुझे पता है, मैंने तो सुभाष घई का नाम इसलिए लिया था ताकि मैं जान सकूं कि आप मेरा शो कितने ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक यू आपके मैसेज के लिए, थैंक यू वीरेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, कल फादर्स डे था और आई एम श्योर आप सबने धूमधाम से मनाया होगा। थैंक यू अर्जुन जी, प्रकाश सुथार जी एंड जितने भी साथी हमारा साथ दे रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस साथ यूं ही देते रहिए, क्योंकि इस तरह के गाने तो मैं आपको सुनवाती ही रहूंगी। और अगर अभी अभी आप जुड़े हैं तो आपको बता दूं कि आज रवि शर्मा की जगह ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a Gold.
1: Like a Extra podcast update.
0: तो लीजिए, आप हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे गाने तो सुनते ही हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स सुनने की आदत है और पसंद है तो आपके लिए है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, जिसका नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और इस बार का टाइटल है साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स, और इसे होस्ट किया है दीप राजा ने। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, अमेजोन पर और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी पर भी आप जाकर लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट को सुन सकते हैं।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: वी've ऑल बीन देयर, नॉइजी यूनि फ्लैटमेट्स, म्यूजिक ब्लेयरिंग, phones going off in the library, but with long-lasting battery life on the lightweight and portable Dell XPS powered by Intel Core Ultra, you can get away from the distractions without needing to find a plug. So you can get back to, well, built for those who get things done. The Dell XPS, built for you. Dell.co.uk/learning.
6: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
7: ट्रेवल हब वर्ल्ड.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड.com।
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस.
9: At all protected.
8: Visit travelhubworld.com.
10: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
11: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
12: Hi, hello.
13: पत्नी प्रीमियर लीग शोज एट राइस लीप अल्बर्टन ईस्ट एंड साउथ लंदन लोर होम लेस्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194।
14: वेलकम टू द जंगल।
13: फिल्म बिल्कुल फेक,
14: हमारे फिल्म आर्मी वाली
15: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
13: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
14: और स्टार कास्ट है
13: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
14: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
13: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
14: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
16: किस लिए फिल्म में।
9: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
12: in Dubai.
1: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
16: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
1: Exclusive radio partner, Like Radio.
17: London, good news. Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
18: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
19: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
18: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
19: Rich, authentic taste every single time.
18: Royal Chai, brewed for business.
19: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
20: 16 days to China, guaranteed departure on 24th September with 100 off for the first 10 if booked before the end of this month. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe.
21: Sounding better than ever in the sunshine. This is Like a Gold.

0: इस खूबसूरत गीत को गाने के लिए किशोर दा को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला था और इस धुन को बनाया था राजेश रोशन ने। और वेमली से इंदिरा जी का मैसेज आया है, आपने लिखा है कि ऋतु रियली नाइस प्रोग्राम, आपको मजा आ रहा है, थैंक यू। और आपने ये भी लिखा है कि आज आप अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हैं और आप चाहती हैं कि कोई गाना मैं आपको डेडिकेट करूँ, तो ये गाना छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा आपको डेडिकेट करते हैं। और आपके साथ साथ भारती जी, आपको भी ये गाना बहुत अच्छा लगा, मानसी जी आपको भी ये गीत पसंद है, तो चलिए आपके साथ साथ उन सभी को जिनका ये फेवरेट गाना है इंक्लूडिंग मी, सबको ये गाना डेडिकेट करते हैं।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: Leica Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 102.2 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
6: Leica Gold.
7: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
12: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
13: Southall Travel, at all protected.
14: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
15: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
14: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
15: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit Cashback. remortgage.co.uk.
14: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
16: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
17: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
16: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
17: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
16: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates rates.
17: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
16: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 लाइन।
18: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
19: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
18: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
19: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
20: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208152025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
21: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
22: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
21: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
22: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे।
21: दर्शन पण अने यूरोप पण।
22: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
21: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
22: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
23: स्प्रिंग इनटू द सनशाइन ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: जिंदगी का बहार।
1: आई मिलन की बेला फिल्म से था ये गाना लता जी और रफी साहब की आवाजों में, और उससे पहले आपने शैलेंद्र सिंह और लता जी की आवाज में बॉबी फिल्म का गीत सुना। यह है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर। आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। शेखर अनंत जी, थैंक यू, आप हमारा साथ दे रहे हैं। ओ सनम तेरे हो गए हम। गिरीश जी कहते हैं बहुत अच्छे गाने चल रहे हैं, ये गाना मेरे नाम कीजिए। लीजिए, हमने किया आपके नाम। जासू जी कहती हैं प्लीज ये गाना मेरे नाम करो। चलिए, आपको भी दिया। ज्योति गिरीश साहब, ये गाना आपके नाम पर भी जाता है। और रजिंदर राज जी, क्या बात है, आपने लिखा है हस्बैंड डे आने वाला है, और ये हस्बैंड डे नहीं है, ये है सताए हुए हस्बैंड डे, यानी कि 27 जून को आपने लिखा है कि सताए हुए बेचारे हस्बैंड्स। अब देखिए, मुझे तो नहीं पता कि ये 27 जून हस्बैंड डे मनाया जाता है, लेकिन मैं गाना सुन रही थी, झूठ बोले कौवा काटे, उसमें एक लाइन थी, तू मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेकर आऊँगा। इस गाने को सुनकर मुझे ख्याल आया कि 70s में ये गाना जिसने लिखा होगा लिख दिया, लेकिन क्या आजकल के ज़माने में किसी की हिम्मत है कि इस तरह की लाइन लिख दे कि तू मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेकर आऊँगा। संभव ही नहीं है जी, आज के ज़माने में कोई ऐसा कह ही नहीं सकता। ज़माना बहुत बदल गया है, और इस गाने को सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। एनीवेज, गाने ऐसे हैं, बोल कुछ भी हो, लेकिन ये गाने हमारे दिलों में रच बस चुके हैं। और आज ऐसे ही कुछ गाने मैंने और भी चूज़ किए हैं, एक एक करके आपको सुनवाती रहूँगी। आपको बस हमारे रेडियो सेट्स के पास रहना है, कहीं नहीं जाना है। और जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं कि मैं हूं ऋतु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो आज £1 आपको देगा 124.85 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको SBI ब्रांच ऑनलाइन या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू करवाना होगा। लेकिन इस जून के एंड से पहले आपको £75 का वाउचर मिल सकता है एवरीडे when you send over £1,000 and also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Lekin terms and conditions bhi apply rahengi.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai.
4: Like a gold.
3: Like a gold.
5: Great news, Tadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tadikalal Raiders Lane.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
12: Be part of a historic grand opening.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 0203-129-9840.
15: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
16: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
17: Four beers, please, garçon!
16: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
18: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लता जी और मुकेश जी की आवाजों में था ये क्लासिक गाना जो हम सभी का फेवरेट है, पिक्चराइज ऑन जितेंद्र और बबीता। और आप सब शायद अब तक जान गए होंगे कि इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक जितेंद्र हैं, और इसीलिए हर शो में कम से कम एक गाना तो आप उनका सुन ही पाएंगे अगर जितेंद्र आपके फेवरेट एक्टर हैं तो।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: So Vijay Gunova ji, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी, स्वागत है आपका इस शो में। एंड भावना, आपका भी स्वागत है। चलिए ये गाना आपके नाम करते हैं और आप कहती हैं चाहे तू माने चाहे ना माने, आई लव दिस सॉन्ग। चलिए आपको डेडिकेट किया।

0: लीजिए लता जी और किशोरदा की आवाजों में सिलसिला फिल्म से था ये गाना. और हमारी आंटी जी कहती हैं कि थैंक यू ऋतु बिग बी साहब का गाना बजाने के लिए. तो इस गाने में तो शशि कपूर और जया बच्चन थे, अमिताभ बच्चन नहीं थे, लेकिन चलिए फिल्म तो उनकी थी इसलिए हमने ये गाना आपके नाम पर किया. और आपके साथ साथ और भी ढेरों मैसेजेस आए हैं जिनका जिक्र करती हूँ.
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो सतीश मित्तल, सुरेश पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए कि आप मेरा साथ आपको पसंद आ रहा है, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, बातों को एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए. विजय गुनोवा जी, आपके भी मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और बिल्कुल आपको मैं थैंक यू कहूँगी क्योंकि आप सब इतने प्यार से अपना समय निकाल कर मुझे मैसेजेस लिखते हैं और हमारा शो सुनते हैं, पसंद करते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. थैंक यू. और भावना, बहुत बहुत धन्यवाद आपके के लिए भी. और अब मैं आपको याद दिला दूं कि आज तो है 22 जून, लेकिन 25 जून को आने वाली है निर्जला एकादशी. ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसे बहुत सारे साथी सेलिब्रेट करते हैं. तो अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो है इस बार थर्सडे 25 जून को. कई बार मिस हो जाती है इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ. और ये एक बहुत बड़ी होती है हमारे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन व्रत में से एक मानी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में आती है. और निर्जला, जैसे कि नाम से ही पता है, निर्जल यानी कि इसमें आप पानी नहीं पीते हैं. और आपको पता होगा किस तरह से इस व्रत को रखा जाता है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया तो साल में जितनी भी 24 एकादशी हैं उन सभी के व्रतों का फल आपको मिल जाता है, उन सभी के व्रतों का पुण्य आपको मिल जाता है. कुछ लोग इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, कुछ इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं, लेकिन ये व्रत निर्जला एकादशी का होता है. और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं भी हैं, हाँ किसी दिन सुनवाऊंगी, आज इतना समय नहीं है. लेकिन 25 को हम फिर से मिलेंगे ना, हाँ तब बताऊंगी कि ये क्यों सेलिब्रेट की जाती है.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं उस प्रोग्राम के बारे में जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं और मैं इसको देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ. हमारे राम, यस लाइका रेडियो नेटवर्क जी टीवी के साथ मिला है माइथोलॉजिकल स्टेज शो जो होने वाला है जिसका नाम है हमारे राम. और ये शो होने वाले हैं 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में लंदन एवेंटियम अपोलो में. आशुतोष राणा इसमें रावण बने हैं और राहुल बुच्चर ने राम का किरदार निभाया है. और इसी शो के चलते मेरी बात हुई है आशुतोष राणा से और उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया है कि इस शो में क्या है, उन्होंने रावण का कैरेक्टर क्यों चुना और इस शो में हमें जो राम है उनका कैरेक्टर और रावण का कैरेक्टर एक अलग नज़रिए से देखने को मिलेगा. तो बहुत सारी बातें हैं जो इस शो में हमें देखने को मिलने वाली हैं और लाइव जिसमें कोई रीटेक नहीं होता उसको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है. तो आई एम सुपर एक्साइटेड, कांट वेट कि ये शो जल्दी से हो. और अगर आपने भी इसके टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी से टिकट बुक कराइए क्योंकि ये सिर्फ 9 से 12 जुलाई तक ही होगा. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. और बहुत जल्द आपको आशुतोष राणा के साथ हुआ इंटरव्यू भी सुनने को मिलेगा.
1: लाइका गोल्ड.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: लीजिए, क्या खूबसूरत गाना आपने सुना आशा जी और किशोर दा की आवाज में, वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम द मूवी बातों बातों में। और अब कोई और है जो मेरे फेवरेट है, मेरे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल प्रभाकर जी।
1: Women's cricket updates presented by Kamal Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है और उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल जी हमारे साथ हैं। कमल जी बताइए आज क्या है आपके पास?
3: रितु जी, पहले तो गुड आफ्टरनून, क्या आवाज है आपका, ब्यूटीफुल वॉइस।
0: थैंक यू।
3: एनीवे, क्रिकेट तो अभी बहुत, यू नो, इट्स गेटिंग वेरी टफ, स्किल

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: तो आज जो 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: So gold rate is 102.2 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: जी अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पर आपका साथ देंगे बाली ब्रह्मभट्ट. मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.
5: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
6: ये है लाइका गोल्ड.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
8: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
7: डेजर्ट सफारी,
8: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
7: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
8: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
9: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
10: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
11: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
10: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
11: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
10: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
11: Visit kajalscouture.co.uk.
12: Welcome to the jungle.
13: Film bilkul fake.
12: Hamari film army wali.
14: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
13: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
12: और स्टार कास्ट है
13: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
12: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
13: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून.
12: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
15: मैं किस लिए फिल्म में.
13: Location, location, location.
16: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
16: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
16: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
16: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
16: In Dubai.
17: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
18: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
17: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
18: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
17: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
18: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
17: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
19: टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी RoboThink UK एक्सपैंड कर रहा है। बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500। पेरेंट्स कैन ऑल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड LAIKA10। विजिट book.robothink.co.uk/LAIKA।
20: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड, द लेक डिस्ट्रिक्ट, डेवन एंड कॉर्नवॉल, टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली एंड द नेदरलैंड्स, स्टार टूर्स टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल, इंक्लूडिंग इंडियन मील्स ऑन टूर। वेल प्लान्ड, कंफर्टेबल, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
21: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
22: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
21: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
23: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
24: Up next, Ballybrumbat with Gold Afternoons on Leica Gold.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: खोचू।
1: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
2: तो महाराज।
1: यस
2: योगी।
1: दैट्स राइट।
2: वेलकम।
1: थैंक यू।
2: स्वागत है।

जो लट लहराई, क्या लिरिक्स लिखी अंजान जी ने और कल्याण जी आनंद जी ने, वो ठेका बताया तो पता चल जाता है कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। फिल्म है कंगन, जिसमें हीरो थे संजीव कुमार और हीरोइन थी माला सिन्हा, अशोक कुमार जी भी थे, अरुणा ईरानी वगैरह वगैरह सब थे। आई होप यू एंजॉइंग दीज सॉन्ग्स। नेक्स्ट वन खानदान।

0: हाँ वो तो कब की बैठ गई थी गाड़ी में, लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहा था। एनीवे सॉरी, वो गाना थोड़ा सा पकाऊ लगा आपको, लेकिन ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मैं जो ट्रिब्यूट कर रहा हूँ दैट इज़ अ ट्रिब्यूट ऑफ शब्द कुमार। शब्द कुमार वॉज अ राइटर एंड ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर हैविंग रिटन सच वंडरफुल डायलॉग्स ऑफ मैनी फिल्म्स, जैसे कि बालिका बधू। वो गाना आपने जो पहला गाना सुना था, कितना सुरीला और कितना खूबसूरत गाना अमित कुमार ने गाया, जो बालिका बधू 1976 का गाना, बड़े अच्छे लगते हैं वो नदियाँ। दैट वॉज रिटन बाय आनंद बख्शी एंड आर डी बर्मन का संगीत था। ये दूसरे गाने में तो अन्नू मलिक का संगीत था और उन्होंने ही गाया था, लेकिन बात ये है कि बालिका बधू, इंसाफ का तराजू, आज की आवाज़, फिर दूसरी एक फिल्म है जवाब, देन मेरा साथी, इंसाफ की पुकार, गंगा तेरे देश में, फरिश्ते, इंसाफ की देवी एंड ये फिल्म मिस 420। इन सब के जो डायलॉग्स लिखे थे वो डायलॉग के लिखने वाले थे शब्द कुमार, एंड ही पास्ड अवे ऑन 21st of June 2008। इसलिए हम उनकी 18th डेथ एनिवर्सरी पे उनको याद कर रहे हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग एक्टर एक्ट्रेस, कुछ फेमस प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, सबको हम याद करते हैं, सिंगर्स को याद करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि डायलॉग राइटर भी एक ऐसा इंसान होता है जो बातों बातों पे जब अच्छा डायलॉग बनता बचता है तो बोला जाता है, सॉरी, एक अच्छा डायलॉग बोला जाता है फिल्म में तो फिर लोग तालियां बजाते हैं। That was this man who had written some fantastic dialogues. इंसाफ का तराजू क्या फिल्म थी, उसके अंदर इन्होंने स्टोरी भी लिखी, इंसाफ का तराजू, स्क्रीन पे भी लिखा एंड डायलॉग्स भी लिखे। जी हाँ, इतनी खूबसूरत फिल्म थी वो इंसाफ का तराजू, विच ऑब्वियसली वॉज एन अवॉर्ड विनर। B.R. चोपड़ा की फिल्म थी, जीनत अमान, राज बब्बर, दीपक पराशर, ये सब, आई मीन इट वॉज अ वेरी डिस्टर्बिंग फिल्म, यू नो, इट वॉज अ बिजनेस मैन हु इज अरेस्टेड फॉर मोलेस्टिंग अ ब्यूटी क्वीन एंड शी लेटर एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिम एंड अरेस्टेड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो फिल्म थी इंसाफ का तराजू, उसके डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले और सब इन्होंने लिखे थे शब्द कुमार, तो उनको क्यों ना हम याद करें आज के दिन। जी हाँ, फिल्म जवाब, उसमें भी द एक्टर वॉज राज बब्बर एंड विकास आनंद एंड राज भारती, दैट वॉज अनदर गुड प्रोडक्शन दे। सो याद करते हुए शब्द कुमार, 18th डेथ एनिवर्सरी, इनकी सारी फिल्मों के बारे में मैंने कुछ बताया आपको, एंड फरिश्ते फिल्म जो थी 1991 की, उसमें इन्होंने स्टोरी जो थी वो लिखी थी, मिस 420 की स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार की थी और डायलॉग्स भी। सो वी रिमेम्बरिंग नन अदर देन शब्द कुमार हु पास्ड अवे इन मुंबई ऑन 21st of June 2008। आगे जाते हुए हम दूसरे एक खूबसूरत एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को याद करेंगे। उनका नाम था जुगल किशोर। He belonged to a small village, Thakurwara, near Palampur in Himachal Pradesh. You know, he lost his father at a very young age and belonging to a very poor family, he went to Bombay. मैं जुगल किशोर जी की बात कर रहा हूँ। And he made a few Punjabi and Hindi films and achieved the biggest success in his Silver Jubilee movie Dada. And he could not enjoy the success of the film Dada as he died of a heart attack in 1979. He's always mistaken with Raj Kapoor's uncle, Jugal Kishore Mehra. But that is another person altogether. We are going to do a tribute of Jugal Kishore ji next.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 124.85 Indian rupees. 124.85 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probates, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Kya games thi over the weekend? Uruguay versus Cape Verde. That was 2 each. And is game mein there was so much to see and enjoy. And surprising it was the results. And then Belgium versus Iran was 0-0. Spain versus Saudi Arabia was 4-0. That was a disaster there. And New Zealand versus Egypt, where Egypt won with 3 goals. Against New Zealand's 1 goal. And today, 6 p.m. is Group J, Argentina versus Austria. And 10 p.m., Group I, France versus Iraq. So it's going to be quite challenging. It's all developing from group stage. Abhi aista aista khatm hone wala hai, and it'll come to the 32. 32 ग्रुप्स में जितने ग्रुप्स है ए टू एल तक उसमें से 32 टीम्स बाकी रहेगी. वाओ, दैट्स गोना बी अमेजिंग.
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स. कॉल 0203 345 2000 और विजिट raklaw.co.uk.
0: एंड डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन Leica.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: Great news, Thadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Thadikalal Raiders Lane.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Hi, hello. Kem cho? Muchu kethi dawai ana ashu chayo. Arara. Public demand. Hariti aavi rahi chu London maro navu natak line. Patni Premier League etle ke PPL. Yes. From 3rd July till 12th of July. Wow. And this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo.
6: Patni Premier League. Shows at Risleaf, Alberton, East and South London, Low Room, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
9: Welcome to the jungle.
6: Film, bilkul fake.
9: Hamare film army wali.
10: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
6: डेंजर, एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
9: और स्टार कास्ट है
6: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
11: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
6: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
12: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
13: किस लिए फिल्म में.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
14: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
13: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
14: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
15: Discover Malta and Gozo with a Twin Centre Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
16: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma darshan no lab. Aap pavitra yatra ma jodao. આપના પરિવાર સાથે જ્યાં મળશે શાંતિ ભક્તિ અને આનંદ અને સાથે આઈફિલ ટાવર સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂર નો આનંદ માણો ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના મંત્રા હોલિડેઝ કોલ કરો 0203-773-6333 મંત્રા હોલિડેઝ વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા
17: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
18: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
19: Laika Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
20: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: What a beautiful song. फिल्म मनोकामना 1980 की, बप्पी लाहिरी जी का संगीत और इंदिवर की लिरिक्स. हम एक्चुअली याद कर रहे हैं राज किरण. राज किरण वॉज बॉर्न ऑन 17 June 1949. ही इज़ नाउ 77 ईयर्स यंग. लेकिन 2003 से लापता. इन्होंने 1973 से 2003 तक बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया. 100 फिल्मों, मोर देन 100 फिल्म्स. एंड अनदर फिल्म अर्थ, जिसका गाना मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, जगजीत सिंह का गाया हुआ. रिमेम्बरिंग ऑफ कोर्स राज किरण. जहाँ भी हो खुश रहो एंड आई होप यू आर हेल्थी एंड फिट.
1: Non-stop classics. Classics. Like a gold.
0: Raj Kiran, the world is looking for you. Agar aa jaoge sabke samne, celebration hoga.

ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. Delays on the M4 onto the elevated section this evening, eastbound from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. A312 Church Road and Mandeville Road is eased from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to North Holt Station. The A406 North Circular Road still heavy both ways at the Hanger Lane Gyratory, and the A40 Western Avenue slowing westbound before Gypsy Corner. There's congestion on the A316 Chertsey Road westbound from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout. To the Tube, and no service on the Northern Line this evening between Edgware and Golders Green, and severe delays between Golders Green and Camden Town, and minor delays on the rest of the line. It's due to a problem with the signals at Edgware.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Del, Del's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
3: Yeah.
4: Like a gold.
3: Like a gold.
5: Gorgeous Couture. For every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
6: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall. UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories, and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit cardialscouture.co.uk.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 8574 8410।
8: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
9: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
10: इस जून FIH Hockey Pro League लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. India versus Pakistan live at Lee Valley Hockey and Tennis Center. High speed action, high intensity moments, बिल्कुल unmissable. अपने टिकट्स अभी बुक करें at englandhockey.co.uk. India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
9: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
11: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hari Haran.
11: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: London, mark the date, 25th of June.
13: Something truly exciting is on the way.
14: The authentic taste of India is finally coming to Leicester Square in central London.
12: Yes, Haldiram is opening 25th of June in London.
14: From Raj Kachori to Chole Bature to Pao Bhajis,
13: Parathas, sweets and so much more. All the flavours you've missed from India are coming right here to London.
12: Haldiram's opening 25th of June
14: at Leicester Square, central London.
15: Haldiram's. वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
16: फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
17: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
16: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
5: द फ्यूचर बिलोंग्स टू क्रिएटर्स। एट रोबोथिंक समर कैंप्स, चिल्ड्रन बिल्ड रोबोट्स, लर्न कोडिंग एंड फ्यूचर रेडी स्किल्स। लाइक हर लिसनर्स गेट 10%
3: 10% off full week bookings with code LIKER10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/LIKER.
18: SonaTours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sona Tours. Call 0208-951-0111.
19: Ashwini, in for Anisa Nasir on the evening show on Like a Gold.
20: नमस्कार, रवि शर्मा अब रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मंडे इवनिंग आपका और हमारा साथ, मोटिवेशनल मंडे के लिए क्या तैयार हैं आप? क्या बात है, मैसेजेस पे मैसेजेस आए। हाय, अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस दर्ज करवा रहे हैं। पूछिए आप सबसे कैसे हैं आप सब, वीकेंड बढ़िया रहा? मंडे निकल गया यार, मंडे ब्लूज ग्रीन्स येलो सारा रेनबो, यस इट्स ऑल डन। अभी टाइम फॉर एंजॉयमेंट, एंड एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे आपकी दोस्त अश्विनी आप सभी का साथ देती है मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम 7 से 10 बजे तक। मुझे मिस किया क्या? अच्छा सच्ची बता, झुट नहीं तो बोलेंगे क्या हो गया मंडे इवनिंग अश्विनी, एकदम इतना लाड़ प्यार में पूछ रही हूँ। ठीक है ना, मेरा तो देखो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है मेरे लिए, फर्स्ट शो इन दिस न्यू वीक है ना, तो कुछ नए से आप कुछ नए से हम, और इस नएपन में हम कुछ यादों की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट, हाँ सवाल जवाब बिल्कुल होने वाला है। ओके, तो एक चीज़ जो है जो मुझे खलती है, आई वॉन्टेड टू एन्जॉय हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ जो होती ना ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी डेज, हम लोग जाते हैं दूसरे शहर, हॉस्टल की लाइफ मिलनी चाहिए, तो बस वो एक चीज़ ना रह गई, मज़ा आता अगर वो चीज़ मिलती तो, है ना। अब छोड़ो, अभी कोई नहीं, वो जो होता ना कॉलेज में यूनिवर्सिटी डेज में जो एक होता है, आई एक्चुअली जस्ट मिस दैट, कि वो एक चीज़ नहीं हुई। तो आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है अच्छा, दुख दर्द पीड़ा वाली, लंबे लंबे ऐसे नहीं बात करेंगे हम, ओके निबंध नहीं लिखने, छोटी सी चीज़। अभी जैसे फॉर मी आई फील कि यार मुझे अगर मिल जाती हॉस्टल की लाइफ एंजॉय करने, कितना सुपर्ब एक्सपीरियंस होता, आपके हिसाब से वो क्या है बताइए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 125 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold.
3: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 29 मिनट्स पास्ट 7, 7:29, 22nd of June मंडे। तो फादर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया भाई सब लोगों ने, ज़रा बताओ। जितने भी फादर्स अभी सुन रहे हैं, आपके बच्चों ने कुछ आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन किया था, आपने अपने फादर्स के लिए कुछ सेलिब्रेशन किया था भाई। अगर आप अनमेरिड है, बच्चे नहीं है, तो आपने ऐसे ही वीकेंड कैसे सेलिब्रेट किया बता दो। ओके, सो लाइफ की और एक थियोरी लेके हाजिर है आपकी ये दोस्त। आज कौन सी थियोरी के बारे में बात करने वाली हूँ? आज मैं बात करने वाली हूँ टू लाइफ थियोरी के बारे में। हम सभी ह्यूमन लाइफ एक ही बार जीते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी दो लाइफ्स होती हैं। एक लाइफ है जो हम रोज़ जीते हैं, रोज़ उठे और सुबह ऑफिस के लिए निकले, बिजनेस के लिए निकले, जो भी काम है हमने, घर के काम है, जो भी हमारा काम है वो काम था, हम किए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें अरे यार टू डू लिस्ट थी, देख लेंगे, कर लेंगे, वो तो घर के काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, वो तो कर लेंगे। अरे यार बकेट लिस्ट थी, हाँ हाँ कर लेंगे, पैसा कमाना है अभी, अरे यार अभी एज अच्छा है तो चलो घूमने चलते हैं, हाँ हाँ बाद में चले जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो हैं, हाँ बाद में, हाँ बाद में, तब ध्यान में आता है कि भाई ये तो एक ही लाइफ अपने पास में, जब कोई हेल्थ का झटका इंसान को बैठता है। मोस्टली हेल्थ का झटका जब किसी इंसान को बैठता है, जैसे कि कोविड ने हम सबको जो इतना बड़ा झटका दिया, जहाँ पे हमारे ध्यान में आया कि यार हमने तो लाइफ जीना शुरू ही नहीं किया। और अगर आप लोग देखें, कोविड के बाद से ही दुनिया भर में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पीपल एक्चुअली स्टार्टेड एन्जॉइंग लाइफ, क्योंकि उनके ध्यान में आ गया कि भाई ये अपने पास में जो लाइफ बची है ना, इसमें आप इन्जॉय कर लो, सारी चीज़ें अचीव कर लो, जो जो अपनी बकेट लिस्ट में था, घूमो फिरो, नाचो गाओ, फ्रेंड से मिलो, जो जो बकेट लिस्ट में लिख के रखी थी कि हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, अब वो लोग जीना सीख गए थे। तो दो टू लाइफ थियरी वही थियरी है जो एक लाइफ में आपको दूसरी लाइफ का एहसास करा देती है कि भाई क्या कर रहे हो, जी लो अपने सपने को, दीदी क्या कर रही हो, जाना था ना बंजी जंपिंग करने के लिए, घूमना था ना, सोलो ट्रिप्स करनी थी ना, जाना था ना पति और बच्चों को छोड़ के अपनी सिस्टर्स के साथ में, अपनी कजिन्स के साथ में, अनजानों के साथ में भी घूमने निकल जाने वाले थे ना, सोलो ट्रिप कहाँ हो गई भाई साहब आपकी, आप भी बस घर की सेवा में लगे हो, कहाँ हैं आपके अपने सपने, जो लिस्ट थी, ये सारी चीज़ें तब हमें एहसास होती है जब हमें किसी न किसी वे में कोई एक झटका यूनिवर्स देता है। तो टू लाइफ थियोरी जो है यही है, एक जिंदगी में दो जिंदगियाँ। कैसी लगी थियोरी ज़रा बताइए। यादों की बारात में, अरे बहुत ही प्यारा सा गीत लाई हूँ आप सबके लिए, गोरे गोरे। ए यार पर ये जो गोरे गोरे सिर्फ उनके लिए, वो बाके छोरे, मतलब जो अगर हम गोरे नहीं हैं तो सांवले हैं तो हमारे लिए नहीं है गीत।
2: The Evening Show with Ashwini. यादों की बारात।

0: समाधि फिल्म से सुनाया था आप सभी को ये गीत। 1950 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि हम आपको यादों की बारात में, स्पेशली यादों की बारात इस सेगमेंट में मैं आपको 50s के एरा के गीत सुनाते हैं, इसलिए उस ज़माने का म्यूज़िक, उस ज़माने की बोलचाल बड़ा मज़ा आ जाता है वो सुनने में, स्पेशली उस ज़माने में जो फिल्म थी। मैंने कहा था ना तुमसे, क्या तुमने मेरी बात नहीं मानी? आई वुड लव टू हैव दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस। ओके, तो संध्या जी ने कहा मुझे पूछा है कि अच्छा आपने क्या क्या किया। एक तो फादर्स डे था, तो मैंने पापा को फ़ोन किया, बोला पापा मैंने आपका फोटो स्टेटस पे लगाया है, मैंने आपके लिए कुछ लिखे। बोले अरे वाह क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। उनका 80 शुरू हो गया अभी, तो बड़े खुश हो गए। तो मैंने कहा स्टेटस खोलो, फिर स्टेटस खोल के देखा, इतने खुश शर्मा वर्मा के एकदम से ना, तो बड़ा मज़ा आया उनके लिए। नाउ कमिंग टू द बकेट लिस्ट, यस, अब होता ही है कि मैं आप लोगों से जब भी कोई बात करती हूँ तो वो मैं ऑलरेडी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी होती हूँ, मैं अपनी आप बीती आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। वेल, मेरी आप बीती अबाउट बकेट लिस्ट ये थी कि आई वॉन्टेड टू डू नॉर्थ इंडिया का यात्रा विथ माई एल्डर सिस्टर, जस्ट हम दोनों बहनें, और हमें ना हमारे पति ना बच्चे कोई नहीं चाहता, बस हम बहनें जाएंगे। खूब घूमे फिरे, खाए पिए, खूब चुगली करी हमने, बहुत हंसे, बहुत मस्ती करी। सो आई थिंक सिस्टर्स बॉन्ड एक अलग लेवल का बॉन्ड होता है। सो वो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो टिक टिक टिक करते चलो। सो एंड द नेक्स्ट प्लान ऑन माई बकेट लिस्ट प्रॉब्ली इस ईयर एंड तक होने वाला है कि मी एंड माई बेस्टीज, हम सभी ने डिसाइड किया था कि हमें कहीं जाना है चारों को साथ में। सो प्रॉब्ली इस साल के एंड के पहले मैं अपनी बेस्टीज़ के साथ में एक धूम धड़ाके वाली ट्रिप तो करने वाली हूँ। अब आपकी बताओ सेकेंड, अभी जो जिंदगी हमें पता चल चुकी है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: क्या बात है, मतलब उफ क्या अमेजिंग गीत है। मतलब मैं ही प्लेलिस्ट लगाती हूँ और मैं ही उफ बोल रही हूँ, क्योंकि बड़े बड़े मेलोडियस ट्रैक्स है ना ये कब के बिछड़े। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में लावारिस से सुनाया गीत, उसके पहले मेरा मन, वो भी 90s वाले। सो 90s वाले बच्चे खुश, 80s वाले बच्चे खुश, हमारा काम खत्म, चलो बैग पैक घर पे जाओ। नहीं नहीं भाई, अभी तो सिर्फ 8:13। तो स्वागतम जी, सुस्वागतम, वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर। बहुत ही अमेजिंग गीत है, इसके बाद जो सुना रही हूँ वॉल्यूम अप रखिएगा।
1: This is Leica UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 British sterling can get you up to 125 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher. £75 voucher, yes, every day. अरे यार हर रोज है, अगर आप £1000 भेज रहे हैं ना तो आप अपना नंबर लगा लीजिए। Also 1 gram of gold coin every week when sending over £2000. Terms and conditions apply.
1: Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.

0: Score Update, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और इजिप्ट की मैच हो चुकी है, जिसे जीता है इजिप्ट ने। ग्रुप जे में अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया के बीच मैच हुआ, जिसे जीता अर्जेंटीना ने। ग्रुप आई में फ्रांस और इराक के बीच मैच होगा रात 10 बजे। एंड डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट 15 मिनट्स का फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: The Evening Show with Ashwini.
1: तो मैंने कुछ ये टिप्स पढ़ी थी, और ऐसा कैसे होगा कि मुझे कुछ नई चीज़ और अच्छी चीज़ पता चले। अच्छा, नहीं हो ना भी हो तो भी सुन लो, मे बी रिविजन हो जाएगा। ओके, दिस इज रिगार्डिंग योर हेल्थ। तो अगर आपको नींद नहीं आती है तो अपनी आंखों को झपकाइए, ब्लिंक करिए फॉर 1 मिनट, अपने आप नींद आ जाएगी, थक के सो जाओगे। बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, अपना हाथ अपने हार्ट पे रखिए एंड टेक स्लो डीप ब्रेथ्स, आपकी एंजाइटी कम होगी धीरे धीरे। बहुत लेजी फील कर रहे हैं, अच्छा सुबह जल्दी उठ के काम पे निकलना है लेकिन सुबह सुबह नींद ही नहीं खुलती, कोई बात नहीं। अगर आप राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड से ब्रश कीजिए, इससे होगा ये कि दिमाग होगा कंफ्यूज कि भाई करा क्या रहे हो, एंड आपकी नींद उड़ जाएगी। ईजी ना, कितना ईजी उपाय है। अगर स्टफी नोज है तो पुट एन आइस ऑन द रूफ ऑफ योर माउथ, आपके स्टफी नोज में आपको रिलीफ मिलेगा। नर्वस लग रहा है, पिंच योर नोज, यू विल काम डाउन। अमेजिंग टिप्स है ना, एंड एनर्जी लो लग रही है तो जाइए ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लीजिए, एकदम फ्रेश। कैसी हैं सारी टिप्स बताइएगा जरूर।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
4: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
3: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
4: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
3: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
4: Let's just say I found my flow.
3: Always discreet. Live with no compromise.
0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
5: Gorgeous Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1-1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear, open 7 days a week.
5: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit Gorgeous Couture.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
9: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा Holidays. What's your travel mantra?
10: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
11: Lattuke halone nandala.
10: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now. ફાધર સન નો બોન્ડ જેટલો સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે.
12: અંકલ તમે પહેલાથી આવા જ છો.
13: આવા એટલે કેવા?
10: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર.
13: મારો बाप बनवानी कोशिश करे तू बुद्धि वेचिया वैसे तू अरे जिंदगी एवी मौज थी जीवजे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे
10: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
13: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर
14: टेस्टी स्वैग एंड स्वीट चार्म एवरी स्पून फील्स लाइक अ ट्रॉपिकल

0: Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show.
1: Like a gold.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: इमोशन ऑफ द डे.

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
4: भाई आप सभी को ले चलते हैं हम कमल जी के पास जो हैं हमारे क्रिकेट संवाददाता। कमल जी, एक तो पहली चीज़ कैसी हैं आप, और वीकेंड भी आप बिजी रहे हैं, आप मुझे भी बता रहे थे बिजी रहा आपका भी वीकेंड, और ये क्रिकेट के अपडेट्स के लिए हम लोग सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं।
5: वेरी गुड इवनिंग टू यू अश्विनी जी, एंड ऑलवेज अ प्लेजर। वेरी हॉट एंड बॉदर्ड, यू नो द वेदर वाज सो सो हॉट यस्टरडे, एंड प्लस एज वी हैड सम गेम्स गोइंग ऑन यस्टरडे एज यू नो। So we had India playing yesterday 158 for 7 in 20. South Africa 161 for 4, 19.1. Or Blue Shirts obviously haar gaye, but it was a great game. South Africa played a really good game. So they played all departments. They were winners, so they won the game. Sri Lanka, on the other hand, 98 all out. West Indies made a big meal of it, 99 for 5, but just went on top and won it. But अश्विनी पता है अभी क्या है कि दो ग्रुप्स है ना, इट्स गेटिंग वेरी हार्ड, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग टाइम्स। ऑस्ट्रेलिया इज ऑन 6 पॉइंट्स, इंडिया 4 पॉइंट्स, साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट्स, और बांग्लादेश डार्क हॉर्सेस आर ऑन 4 पॉइंट्स एज वेल। ग्रुप बी में इंग्लैंड 6 पॉइंट्स, वेस्ट इंडीज ऑन 6 पॉइंट्स। सो इधर का तो हिसाब किताब आई कैन सी, बट हियर एवरीथिंग टू प्ले फॉर बिटवीन इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, to see who can win that, you know, who loses and wins and get to the semi-final. So, बहुत ही अच्छी games हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, but games भी तो बहुत high skillful में खेल रहे हैं and good spirit.
4: जी,
5: so I'm hoping it will be a great game. Tomorrow we got 3 games, New Zealand, Scotland, Sri Lanka, Ireland and Australia, Pakistan, the big one. So it will be a good, good games for tomorrow. And we will give you the updates.
4: बिल्कुल कमल जी, और कल का टेम्परेचर भी हमने यहाँ पे बताया है बहुत हाई रहने वाला है, 35 डिग्री यहाँ का, 35 मतलब हम तो चले गए इंडिया के 45 to 48 डिग्रीज। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, कीप योर सेल्फ डिहाइड्रेटेड, और हमें डिहाइड्रेटेड नहीं भाई, हाइड्रेटेड बोलना था मुझे, हाइड्रेटेड रहिए। जी जी कमल जी, थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड कि कल आपसे बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। प्लीज अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।
5: थैंक यू सो मच, बाय बाय।
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: Leica Extra Podcast Update.
4: जी, तो एपिसोड नंबर 21 आ गया है, साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। दीप राजा ने सवाल जवाब किए हैं, ब्रेकिंग बैरियर्स इन मेल डोमिनेटेड फील्ड, व्हाई रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, बहुत सारी चीज़ों पे बातें हुई हैं। जरूर देखिएगा, सपोर्ट करिएगा हमारे पॉडकास्ट को। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
4: मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स नियरली 38 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है आपका अपना पसंदीदा लाडला आपका अपना लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। आज आपको इमोशन ऑफ द डे, विच वॉज मोटिवेशनल मंडे, इसमें सुनाया जिंदगी मिलके बिताएंगे। तो देखो भाई, आप और हम भी तो अभी यहाँ पे जिंदगी मिलके बिता रहे हैं, एक तो रोज़ के ये इतने अमेजिंग से प्लेलिस्ट, फिर आपके हालचाल, हमारे हालचाल, मैं आपको पूछती हूँ आप कैसे हैं, आप मुझे पूछते हैं कैसे हैं। तो भाई मेरा वीकेंड तो एकदम मस्त मस्त गया, बिट रिलैक्स्ड या कम्पेयर टू लास्ट वीकेंड विच वॉज क्वाइट ऑक्यूपाइड, ये ज़रा अच्छा सा रहा। एंड कल जो है वो इतना गर्म होने वाला है, मैं तो कई बार सोचती हूँ कि किचन में जाके खड़े होकर बनाएं क्या, पहले ही ना बना के रखना चाहिए, ये बाहर से ऑर्डर भी करो तो इतनी। इज इट ओनली मी कि मेरे सिर में ये सवाल आते हैं जब इतनी गर्मी होती है और रेस्टोरेंट्स में और वहाँ पे होटल में जो लोग कुकिंग करते हैं, आई नो एसी होगा वहाँ पे, फिर भी यार मतलब इतनी गर्मी में जो लोग फूड स्टॉल लगा के बाहर खड़े होते हैं, भाई एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप उनमें से हैं जिनका कोई स्टॉल बाहर लगाने वाले हैं आप गर्मी में, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। ओके, तो मोटिवेशनल मंडे में प्लीज़ जिंदगी मिलके बताएंगे, प्यार से बिताएंगे, प्यार दो प्यार लो। हाँ, मेरी अभी लास्ट ये वाले डायलॉग्स नहीं आए, अभी तो शो खत्म होने में बहुत टाइम है। नेक्स्ट ट्रैक इट्स अ ब्यूटिफुल वन, किशोर कुमार की आवाज़ में डार्लिंग डार्लिंग फिल्म से सुना रही हूँ आपको ये गीत। रोमांटिक ट्रैक है, अच्छे लगते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में जो वेरिएशन वो देते हैं, जैसे कि हम भी पूरी वेरिएशन लेके आते हैं आपके लिए, कि चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, सारे एरियाज़ को कवर करने की पूरी हम कोशिश करते हैं कि भाई जहाँ पे गर्मी आ रही है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पता नहीं क्यों मैं आज सबको ये ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने टेम्परेचर जब से देख लिया ना, तो मुझे एक तो गर्मी से वैसे ही बड़ी परेशानी होती है, और आप में से कितने लोगों ने वही कहा है जो हम लोग सब सेम बोट में, भाई बहुत गर्मी हो रही है। एंड आई थिंक एयर कंडीशनर्स ना बिल्कुल अभी मस्ट हो गए हैं यहाँ पे भी, आपको क्या लगता है बताइए।
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
0: Travel Hub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
0: Visit travelhubworld.com.
6: Hi, hello, Ketcho, Muchu, Ketchi, Dabayana, Ashu, Taigo, Arara, Public Demand, Hariti, Aave, Raichu, London, Maru, Navu, Natak, Laine, Patni, Premier League, Etleke, PPL, yes, from 3rd July till 12th of July.
7: Location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
12: BAPS મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
11: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
12: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
11: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
12: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર્સ સાથે.
11: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
12: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Like a Extra podcast episode, Deep Raja champions South Asian females in sports.
14: I didn't have any female role models. I'm a Liverpool fan, so Steven Gerrard was my role model. So now being 26 and doing what I'm doing, I want to be that person that younger boys and girls look up to and think, if Simran can do it, I can do it.
2: Like a Extra is here. Search for our podcast, Like a Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: में ला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 47 minutes past 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। पहले घंटे में मैंने पूछा था कि भाई जैसे मेरी जो इच्छा थी कि मुझे कभी हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करने मिले, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है यार मिल जाती तो अच्छा हो जाता। किसी ने कहा कि भाई मुझे बाइसिकल चलाना सीखना था जो मैं सीख नहीं पाई, तो वो चीज़ रह गई। किसी ने कहा कि मैं फुटबॉल सीखना चाहता था, फुटबॉल का गेम खेलना चाहता, बस वो रह गया तो रह गया। अरे कोई ना, जो चीज़ें रह गई अभी गाड़ी चलाना या फुटबॉल खेलना अभी भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, स्पीड अलग रहेगी लेकिन ठीक है, हॉस्टल वाली लाइफ तो नहीं हो सकती अभी। बताओ, हो सकती है, हो गया ना एक पार्ट मिसिंग, बट ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए जो हमें जो जो चीज़ें मिली है। देखो मैंने ही बोला, कितना कॉन्ट्रास्ट ना, मैं बोल रही हूँ कि वो चीज़ रहेगी और मैं ही कह रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड में रहूँ, ये कमाल है। अच्छा तो ये जो चीज़ें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि भाई लेफ्ट ओवर पास्ता हैज़ एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स। अब आगे सुनिए, दैट्स बिकॉज इट कंटेन्स मोर रेजिस्टेंट स्टार्च देन फ्रेश पास्ता थैंक्स टू द इफेक्ट ऑफ कुकिंग एंड कूलिंग ऑन द पास्ता'स स्टार्च स्ट्रक्चर। सो रेजिस्टेंट स्टार्च हैज़ बीन लिंक्ड टू इम्प्रूव्ड ब्लड शुगर कंट्रोल एंड बेटर गट हेल्थ। तो अगर लेफ्ट ओवर पास्ता आपको आपकी मैडम जी खिला रही हैं या आपके सर जी आपको कह रहे हैं कि नहीं बस ये मैंने कल बनाया था पास्ता खा लो, तो चुपचाप खा लेना। देखो हेल्थ बेनिफिट है, और किसी को बताना मत कि अश्विनी ने बताया था, या खुल के बताओ भाई कि अश्विनी ने बताया था उसके शो पे, हमने सुना है, हमें पता है।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1 you'll get 125.25 Indian rupee, 368.43 Pakistani rupee, 442.84 Sri Lankan rupee, 162.73 Bangladeshi taka, 83.52 Afghani, 171.4 Kenyan shilling and 1.32 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.72 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: अब शोले के म्यूज़िक का ये वाला पार्ट आपने कभी सुना ही नहीं था ना, मैंने बोला कि नहीं आज तो मैं वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलने देती हूँ, आप लोगों को मैं सुनाने वाली हूँ ये। तो सेकेंड आवर हम सभी ने इमोशन ऑफ द डे सुन लिया, थर्ड आवर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो गज़ल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, ज़रा बताइए फटाफट, लिख के भेजिए आपका क्या अंदाज़ है। तो अभी भी चीज़ें आ रही हैं, लोग जो हैं फादर्स डे के बारे में हमें बता रहे हैं। और क्या बात है, आप तो अरे बाप रे लेडी गुलजार बन गई। हाँ प्रज्ञा जी, गोरी गोरी गाँव की गोरी किस लिए बन गई दूरी, आ हाँ देखो मज़ा आ गया। चलो इसी बात पे मैं एक शायरी सुनाती हूँ जो मैंने लिखी थी, बड़ी फैंटास्टिक है, रिश्तों पे है। रिश्तों की महफिल सजी थी, रिश्ते निभा रहे थे। रिश्तों की महफिल सजी थी, रिश्ते निभा रहे थे, रिश्तों के नकाब पहने और पहनाए जा रहे थे। हमने पूछा क्या कर रहे हो, हमने पूछा क्या कर रहे हो, वहाँ से जवाब आया दिल पे पत्थर रख कुछ रिश्ते बनाए थे बस वही निभा रहे हैं। रिश्तों की महफिल सजी थी, रिश्ते निभा रहे थे। हो जाता है ना ज़िंदगी में कभी कभी कि ऐसे रिश्ते बन जाते हैं और उन रिश्तों को निभाते निभाते कहीं हम ही खो जाते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम चल रहे हैं इस आवर के लास्ट गीत की तरफ।
1: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन। This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on the evening show.
2: Like a Gold.
3: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
4: Welcome to the jungle.
5: Film बिल्कुल फेक.
4: हमारी फिल्म आर्मी वाली
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
5: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
4: और स्टार कास्ट है
5: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
5: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
9: किस लिए फिल्म में.
10: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
12: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
14: 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
15: The Evening Show with Ashwini. Leica
14: Gold. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK.

0: थर्ड एंड लास्ट आवर का आगाज हमने किया तो बहुत ही बढ़िया गीतों के साथ। पहला गीत था खुदा का वास्ते अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में तू ना जा मेरे बादशाह, एंड सेकंड वाज अमित कुमार एंड आशा भोसले की आवाज़ में नास्तिक फिल्म से आसवी को सुनाया ये गीत। थर्ड गीत की तरफ चल रहे हैं, रुख कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। आपका और हमारा अब ये सुहाना सफर शुरू हो चुका है। फ्राइडे तक चलेंगे साथ, 7 to 10 रहता है आपका और मेरा साथ। कई लोग कह रहे हैं कि हमने तो टेलीविजन देखना छोड़ दिया, हम तो रेडियो सुन रहे हैं। वेरी नाइस, पैसा वसूल हो गया ना। बस ऐसे ही हंसी मजाक इंटरेक्शन, कुछ थॉट्स हमारे साथ में रह जाती हैं आफ्टर द शो, कुछ लोग हमारे साथ रह जाते हैं। हमेशा कहते हैं कि जो लोग आपके थॉट्स में आपके साथ रहते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। मेरा इम्पैक्ट रहता है कुछ ऐसे? बताइएगा जरूर।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 125 Indian rupees. Send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you send over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.

0: Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: इन ग्रुप जी न्यूजीलैंड और इजिप्ट के बीच में इजिप्ट ने मैच जीता। ग्रुप जे में ऑस्ट्रिया एंड अर्जेंटीना के बीच मैच हुआ तो अर्जेंटीना ने मैच जीता। ग्रुप आई फ्रांस और इराक के बीच मैच शुरू होगा रात 10 बजे। एंड डोंट फॉरगेट यू कैन गेट अप टू 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: भाई अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं कि गजल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली। तो यार अब मतलब कितने दिन हो गए ना, 2 months हो गए नियरली मैं शो कर रही हूँ, है ना। सो गजल या कव्वाली, अभी भी ये कई लोग कहते हैं कव्वाली तो नहीं जी, इट्स मंडे। मंडे जो है, मंडे होता है गजल का दिन, तो आपको गजल सुनाने वाली हूँ, बहुत ही बेहतरीन गजल है। उसके पहले आर्टिस्ट ऑफ द वीक आए हैं, जीतू जी का गाना मैंने आपको सुनाना है। वो ऐसे ही कुछ बोलते थे ना ऐसे उनके। आई एक्चुअली लव द एनर्जी ऑफ जितेंद्र जी। एक तो आई वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर दिस सॉन्ग, मेरे देश में पवन चली पुरवाई, उसमें क्या भागते हैं जीतू जी। वो वन टेक में वो शॉट हुआ था क्या, मुझे पता नहीं, अंदाज लगा रही थी मैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाने उनके जो वो भागना शुरू होते थे, मतलब ट्रॉली भी कितने साथ में भागती होगी, कैमरा कितना साथ में भागता होगा, मैं ये सोच रही थी। सो जी हाँ, जितेंद्र जी हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं पूरे सप्ताह के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया गीत आने वाले हैं। सो उन्हीं की एक फिल्म का गीत आप सबको सुनाने वाली हूँ, हमजोली फिल्म से, आशा भोसले एंड मोहम्मद रफ़ी। अंदाज लगा सकते हैं कौन सा गीत होगा? जी हाँ, बैडमिंटन रैकेट्स, शटलकॉक एंड जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है, बस उसे इमेजिन कर लीजिए और टक टक टक जो आवाज़ आने वाली है उसे ज़रा विजुलाइज कर लीजिएगा। और साथ में देखिए, हर दिन जो है, हर एक दिन जो होता है वो किसी न किसी चीज़ के लिए डेडिकेट किया जाता है। 22nd of June किसी का बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगी, पर इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती हैं, जैसे कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, उसके बाद में बी काइंडर डे, नेशनल चॉकलेट एक्लेयर डे, नेशनल लिमोनसेली डे, इंटरनेशनल बीइंग यू डे, विंड रश डे एंड नेशनल अनियन रिंग डे। अरे अनियन रिंग डे मतलब अपने यहाँ पे कांदा भजी है ना, प्याज के पकौड़े। वो अनियन रिंग तो मुझे प्याज के पकौड़े लगते हैं, बस सिर्फ उसको रिंग दे दी है और उसको भी फ्राई वाई करके आपको खिलाया जाता है। तो कांदा भजे का दिन है आज, तो कांदा भजे का दिन आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, अपने यहाँ पे भजिया बनाइएगा और बस खा के देखिए। ऑन दैट नोट आई वुड क्विकली शेयर कि हम लोग जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, हम लोग ना भजे भात खाते हैं, मतलब ये अनियन पकौड़ा जो होता है अलॉन्ग विथ प्लेन वाइट राइस, इसमें प्याज को चूर लीजिए और ऊपर थोड़ा सा ऑयल और नमक। ओहो अमेजिंग। ओके, माई सलाइवरी ग्लैंड्स आर गेटिंग एक्टिव नाउ।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: I'm literally crying.
3: Same, but my bladder can't take these laughs. I may have to leave.
4: Wait, try one of my always discreet maximum protection pants. Total game changer when the floodgates open up.
3: Seriously?
4: It gives me complete peace of mind, even for my heaviest bladder leak surprises. Go try one on.
3: Fair play. And now I can stay until the last gag.
4: Try Always Discreet's new maximum protection pants for heavy bladder leaks.
0: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड।
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: वेलकम टू द जंगल
4: फिल्म बिल्कुल फेक
3: हमारी फिल्म आर्मी वाली
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो
3: और स्टार कास्ट है
4: अक्षय कुमार सुनील शेट्टी अर्षद वारसी परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास
6: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
4: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून
7: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
8: मैं किस लिए फिल्म में
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit StarTours.com. UK.
12: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
13: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Dutch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
14: For £1, you'll get 125.35 Indian rupee, 368.51 Pakistani rupee, 442.98 Sri Lankan rupee, 162.75 Bangladeshi taka, 84.09 Afghan Afghani, 171.51 Kenyan shilling, 1.32 US dollars.
15: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
15: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
14: Gold is currently trading at £101.84 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
14: ठीक ठीक करते हुए घड़ी कह रही है एक बार जरा टाइम चेक करवा लीजिए तो इट्स 43 मिनट्स पास्ट 9 आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर भाई हमारी गोल्ड नाइट सर्विस है ओवरनाइट सर्विस तो ज़रूर सुनिएगा ट्रैवल कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो ये गोल्ड नाइट सर्विस डेफिनेटली आपका साथ देगी बहुत ही अमेजिंग प्लेलिस्ट हम लोगों ने वहाँ पे लगा रखी है लाइका रेडियो 90 सुनिएगा, लाइका रेडियो पंजाबी एंड लाइका रेडियो लाइका गोल्ड 2 विच इज बॉलीवुड क्लासिक्स नॉनस्टॉप। तो ये बहुत सारी वेरिएशन आप सबके लिए हमारा लाइका मीडिया लेके आया है। कल हमारा जो ट्यूसडे है उसके लिए हम लोग मिलेंगे, दैट इज़ टेरिफिक ट्यूसडे। हमेशा की तरह बस इतना ही कहूँगी कि देखिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ना जाने क्यों हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। प्यार दो, प्यार लो, एक नई लाइन जोड़ दो इसमें, कम्युनिकेट किया करो, है ना। पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, है ना, एंड आई एम श्योर आप में से कोई भी अपने पावर का तो यूज़ नहीं करता होगा। सो अपने आप का ख्याल रखिए, कल बहुत ज़्यादा धूप है, जिम जाने वाले अर्ली मॉर्निंग जिम जाइएगा। मैं भी सच में वही प्लान कर रही हूँ कि धूप में ना जिम जाने की मतलब हिम्मत ही नहीं होती, ऐसे ड्रेन्ड फीलिंग होती है। अपने आप का ख्याल रखने के लिए क्या करने वाले भाई, जितने भी ठंडे लिक्विड्स हैं अपने पास रखिएगा, छाछ हैं, जूसेस हैं, जो भी, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड धूप बहुत ही इट विल बी यू नो वेरी हार्श धूप, तो सनस्क्रीन लगाइएगा, छाते रखिएगा, कॉटन के कपड़े पहनिएगा, और ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकलिएगा, और फैंस लगा के रखिएगा, बहुत बहुत ज़रूरी है, एयर कंडीशनर है तो वो भी अच्छा है। और अपने घर में पेट्स हो तो प्लीज़ उनके लिए भी स्पेशली फैंस लगाइए। ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।
8: ये है लाइका गोल्ड।
16: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
17: मुझे कुछ कहना है।
18: मुझे भी कुछ कहना है।
17: मुझे कुछ कहना है।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: Leica Gold. Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
3: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963 757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
7: In Dubai.
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
10: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 now. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. आज ही एक्शन ले 0208-907-2444.
12: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: Welcome to the jungle.
2: Film बिल्कुल fake.
1: हमारी film army वाली.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून.
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
6: मैं किस लिए फिल्म में.
7: Great news, Thadikalal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thadikalal Rainers Lane, 287 Rainers Lane Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Thadikalal Rainers Lane.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
9: गारंटेड.
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल
9: फोन 02085748410.
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
10: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods, Hayes, from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods, Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods, Hayes.
2: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
1: Lottoke halone nandala.
2: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
6: Are we there yet?
11: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
11: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
11: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
12: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
13: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत.

0: Gold Nights. Hit tracks non-stop throughout the night. Like a Gold on 10:35 a.m.
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me.
3: Southall Travel, at all protected.
4: चलो जाइए एक नवा सफर पर
5: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जंजिबार अने दारिसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
6: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
5: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
6: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
5: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
7: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
8: इन रियल एस्टेट लोकेशन is everything and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
10: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
12: Mom, I'm outside yes literally just landed
13: wait how are you calling already I'm still searching for Wi-Fi
12: oh I'm on Simzy downloaded the eSIM back at Heathrow
13: and you didn't pay those massive roaming charges
12: not a penny extra just a cheap local data plan I even kept my UK number for bank alerts
10: heading home for the holidays skip the roaming drama get instant 5G data in India and 100 plus countries download the Simzy app today Simzy your global flow T's and C's apply
14: Like a Radio Network Proud hospitality partner, Ragasan.
15: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
16: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
1: फिर
0: फुर,
1: फुर,
0: फुर, फुर, फुर। बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
2: कह दो
0: कह दो कह दो कह दो

0: आई।
1: रघुकुल रीत चला चती चल, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचाना ना जाई,
2: जाई जाई
1: बन चले।

0: संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
1: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: Leica Gold.
1: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साफो ट्रेवल Auto protected.
3: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।